जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इसी बात के साथ कि जीवन में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वक्त कितना भी कठिन या हमारी परीक्षा लेने वाला क्यों ना हो, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी,

0: more, call now 9639010313.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आपकी सफलता के लिए आपकी अपनी दृढ़ इच्छा से मजबूत या जरूरी और कुछ नहीं। जी हां, इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण दूसरी कोई बात या चीज नहीं होती। अगर आपको जीवन में सफल होना है, कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, धरोहर है। क्योंकि अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो धीरे धीरे ही सही लेकिन रेंगते हुए आगे बढ़ो। कभी भी लेकिन रुकना नहीं है।

निराशा सीमित हो सकती है, लेकिन उम्मीद को कभी भी सीमित मत होने दीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, निराशा जो होती है वो कभी भी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। एक निराश व्यक्ति कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि हर बात में नकारात्मकता हावी रहती है। एक निराश व्यक्ति कभी भी अच्छी बातें इसीलिए नहीं सोच पाता क्योंकि निराशा उसके मन में घर कर जाती है। और एक निराश व्यक्ति कभी भी जीवन में ना आगे बढ़ने की सोचेगा, ना अपना ध्यान रखेगा, ना ही वो अपने परिवार का ध्यान रख सकता है। इसीलिए निराशा ही सबसे बड़ा अभिशाप है। निराश व्यक्ति ही मरने मारने की बातें करता है। निराशा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये जरूर हो सकता है कि उम्मीद थोड़ी कम हो। आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि शायद वक्त बड़े मुश्किल से कट रहा है, बहुत ही समस्याओं भरा समय है, या आपको परेशान करने के लिए ऐसा वक्त आ गया है कि आप पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तब भी आपको निराश नहीं होना है, तब भी आपको उम्मीद की एक छोटी सी ही सही किरण तो जीवन में होनी ही चाहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। अंधकार को अंधकार दूर नहीं कर सकता, उसे केवल प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। इसीलिए जीवन में जब बहुत अंधकार में समय गुजर रहा हो, तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ऐसे पॉजिटिव या सकारात्मक लोगों की, उनके सानिध्य की, उनके साथ की जरूरत है, जो इस अंधेरे में रोशनी का एक दिया आपको दिखा सके। क्योंकि जब हम घनघोर विपत्तियों में, कष्ट में या पीड़ा में होते हैं, तब हम बहुत निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे में हमें एक अच्छी बात बोलने वाला, पॉजिटिव विचारों से ओतप्रोत कर देने वाला, जीवन के सकारात्मक तथ्यों को हमारे सामने रखने वाला, या जीवन के जिंदगी के महत्व को हमें कोई समझाने वाला व्यक्ति ही हमारा सबसे बड़ा परम मित्र बन जाता है। इसीलिए अपनी संगत को हमें बिल्कुल पॉजिटिव लोगों से ही भरकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संगति का असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है।

पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रास्ता एक एक कदम चलकर ही पार होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये विचार अनेक दार्शनिक परंपराओं में मिलता है। इसका सार है कि बड़ी समस्या को भी हम छोटे छोटे कामों में बांट देंगे तो एक दिन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। यानी समस्या का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अगर समाधान ढूंढने के राह पर निकल जाएंगे तो एक दिन समाधान आपको मिल ही जाएगा। यानी हमारा माइंडसेट ही हमारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कठिनाइयां जीवन में कितनी भी विकराल क्यों ना हो, याद रखिए एक एक कदम आपको उसके पार लेकर जाएगा। और यह भी याद रखिए, क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, कष्ट या दुख, दरिद्रता, परेशानियां आती है ना, हम टूट जाते हैं, अकेला पाते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला या असहाय मत समझिएगा। ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं इन समस्याओं के पार एक दिन जरूर जाऊंगा। ये माइंडसेट ही आपको जीवन में जीत की ओर लेकर जाएगा। कभी खुद को अकेला ना समझिए, वो परमपिता परमेश्वर है आपके साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। रुद्रम चामकम, ये पावरफुल मंत्र आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर बाहर फेंक देगा। श्री रुद्रम चमकम संपूर्णम।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने।
2: कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हां, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं, और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो, अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांज जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने।
2: कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा

0: जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
0: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
0: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
0: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
0: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
0: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
2: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
0: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूं?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूं, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
2: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें मां बेटी के बीच डर के

0: जाए संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं। अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है। बस यही चाहिए, सवाल रहे, जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है, और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझ कर कि ऐसा तो होता ही है ये समझ कर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें, और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी, या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी
बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है, प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी

0: सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो, अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है, यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें, या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए
1: द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।

किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो, आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हे हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:12, 23 सितंबर आज की तारीख और दिन है जनाब आज का बुधवार। और दोस्तों, गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब और गुड वाला फॉर्मूला ऑफ द डे, वो क्या कहता है चलिए सुनते हैं साथ में। हवाएं केवल पतंग को ऊपर उठा सकती हैं, लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाए रखना पतंग की अपनी डोर और संतुलन पर निर्भर करता है। यानी कि जीवन में अवसर, अनुकूल परिस्थितियां या दूसरों की मदद आपको शुरुआती बढ़त तो दिला सकती हैं, लेकिन लंबी रेस में आपकी अपनी योग्यता, आपका अपना चरित्र और मेहनत ही काम आती है। भाग्य आपको केवल एक मौका देता है दोस्तों, लेकिन उस मौके को सफलता में बदल लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। जब आप अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तब जाकर के आप वास्तव में सशक्त बनते हैं। तो इसीलिए दूसरों के सहयोग का इंतजार करने के बजाय स्वयं को सक्षम बनाएं, और वहीं अपनी गलतियों के लिए दूसरों या फिर परिस्थितियों को दोष बिल्कुल भी ना दें, बल्कि अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर काम करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कठिन समय हमारे दृष्टिकोण की परीक्षा लेता है, और जब कोई विपत्ति आती है तो एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ता है। तो अब आपको चूज करना है कि आपको टूट जाना है या रिकॉर्ड तोड़ देना है। जो लोग चुनौतियों को एक रुकावट के बजाय एक शिक्षक की तरह देखते हैं ना, वो हर संकट में भी विकास का अवसर खोज लेते हैं। जीवन में स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना कि उस स्थिति के प्रति आपका नजरिया हो।

सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया पॉजिटिव रखें और फिर देखिएगा कि आपके आसपास का जो माहौल रहेगा वो सकारात्मक रहेगा और जिससे आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, वो भी पॉजिटिव वाली, है ना। चलिए फिलहाल ऊर्जा तो आपको मिलेगी इस प्यारे से गाने से भी, इस गाने को एंजॉय करेंगे। सोनू निगम की आवाज़ में ये गाना बेहतरीन सा गाना है, होप आपको पसंद आएगा। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के साथ साथ आप व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे अपनी बात कर सकते हैं। फिलहाल ये गाना आपकी खिदमत में एंड गुड मॉर्निंग।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों 9:26 हो गई हैं और 23 सितंबर आज की तारीख है, बुधवार आज का दिन है. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी. प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार. दोस्तों, क्योंकि आज की तारीख 23 सितंबर है तो आज के दिन में क्या है बात खास, यानी कि क्या कहता है आज का इतिहास, चलिए इस पर बात कर लेते हैं. मैं आपको बताऊं कि आज ही के दिन 1803 में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाई की लड़ाई में मराठा सेना को पराजित किया था. वहीं भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह निरोधक विधेयक शारदा एक्ट पारित हुआ था आज ही के दिन 1929 यानी कि 1929 में. वहीं आपको बताऊं 1965 के बाद आज ही के दिन की तो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम का आदेश लागू हुआ था. और वहीं 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV-C14 के जरिए ओसन सेट 2 सहित 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित किया था. और बहुत सारे लोगों का आज जन्मदिन भी हो जाता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी. और भी आज है खास, वो है आज हैफा दिवस. हैफा दिवस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी. और साथ ही साथ आज है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतिक भाषा दिवस, तो इस पर भी हम बात करेंगे कुछ ही देर में. बाकी आप कुछ मुझे संकेत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. बहुत ही आसान सा नंबर है 9639012111. इस नंबर पर कॉल या मैसेज के साथ साथ हमसे आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी, और अपनी बात बेझिझक, बेधड़क और बिल्कुल बिंदास होकर के मुझ तक पहुँचा सकते हैं. फिलहाल मैं आप तक पहुँचा रही हूँ ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम. आई होप आपको ये पसंद आएगा. और फिलहाल टाइम की बात करें तो 9:28, ये गाना आपकी खिदमत में.
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: Are you?
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मानो, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, 9:57 हो गए हैं। कभी खुशी कभी गम मूवी का बहुत ही बेहतरीन सा गाना भी हमने इंजॉय किया, और इसी के साथ वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज का दिन क्यों खास हो जाता है, यानी कि 23 सितंबर क्यों खास हो जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके इतिहास के बारे में हमने जाना, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि आज ना कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनका जन्म हुआ और काफ़ी महान वो रहे। मैं आपको बता देती हूँ, 1908 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्हें उर्वशी और कुरुक्षेत्र जैसी अमर कृतियों के लिए जाना जाता है। इनके बारे में कुछ और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 1903 में स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने साइमन गो बैक और क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए थे। वहीं 1935 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। वैसे प्रेम चोपड़ा की अभिनय के बारे में बात करें तो बड़ी ही आइकॉनिक उनकी एक्टिंग रही है। आपको कौन सी मूवी में उनका और कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। ब्रेक के बाद आपको बताऊँगी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में भी, और बात करेंगे आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी। फिलहाल चांदनी मूवी का बहुत ही बेहतरीन सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, किसी गाने की फरमाइश करनी है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। मेन वाइल इंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड।

0: मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास। और 10:18 हो गए हैं। इश्क विश्क प्यार व्यार गाना भी हमने इंजॉय किया। एंड अभी ना मैं आपसे बात करने वाली हूँ रामधारी सिंह धनकर के बारे में। देखिए, राष्ट्र कवि रह चुके हैं और हिंदी साहित्य के दीप्तिमान सूर्य और राष्ट्र कवि की उपाधि से ये विभूषित हैं। इनका नाम है रामधारी सिंह धनकर। इनका जन्म आज ही के दिन 1908 को हुआ था, बिहार के बेगूसराय ज़िले में, और ये सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ। वहीं उन्हें मुख्य रूप से ओज और क्रांति का कवि माना जाता है, जिनकी कविताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दोस्तों, आपको बता दूँ कि दिनकर जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता रवि सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी माता मनरूप देवी ने उनका लालन पालन किया। वहीं शिक्षा उन्होंने ली गांव के ही स्कूल में, और उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। इसी के साथ उन्होंने इतिहास, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू पर गहरा अध्ययन किया। मतलब इतनी सारी भाषा के प्रेमी वो रहे। और इसी के साथ आपको बताऊं कि दिनकर जी छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि थे। उन्हें ओज और विद्रोह का कवि कहा जाता है, लेकिन वो केवल वीर रस तक सीमित नहीं थे। उनकी रचनाओं में कोमल प्रेम, दर्शन और राष्ट्र चेतना का अद्भुत संगम मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी कविताएं नवयुवकों के लिए इंस्पिरेशन बनी। रेणुका और हुंकार जैसी रचनाओं ने युवाओं के भीतर देशभक्ति की लहर भी पैदा की। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त के बाद केवल दिनकर जी ही हैं जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में व्यापक स्वीकृति मिली हुई है। दोस्तों, उनकी कुछ कृतियां हैं जो मैं बिल्कुल आपसे साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले चलिए लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों, आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
5: हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर, और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 10:44 हो गई है एंड क्योंकि आज की तारीख है 23 सितंबर और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्मदिन रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो कि एक राष्ट्रकवि हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और आपको बता दूँ कि उनके कुछ प्रसिद्ध काव्य रहे, जैसे कि कुरुक्षेत्र उसमें शामिल है, उर्वशी, रशिमरथी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, और उनके कुछ गद्य भी ऐसे रहे जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे, संस्कृति के चार अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और अधि नारेश्वर। मतलब इन्होंने काफ़ी सारे गद्य भी लिखे जो काफ़ी फेमस रहे। वहीं आपको बताऊं कि कुरुक्षेत्र 1946 में इन्होंने लिखा था, महाभारत के शांति पर्व पर ये बेस्ड है और ये प्रबंध काव्य युद्ध और शांति के दार्शनिक प्रश्नों पर विचार कर रहा है। ये कृति आधुनिक युग के हिंसक प्रवृत्तियों पर गहरा इम्पैक्ट डालती है, गहरा प्रहार भी करती है। वहीं उर्वशी जो इनका एक काव्य आया, काव्य नाटक ये रहा, ये 1961 में आया, जिसमें उर्वशी के माध्यम से उन्होंने काम, प्रेम और आध्यात्मिकता के अंतर संबंधों को दर्शाया है। इस कालजयी कृति के लिए उन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बताऊं कि कर्ण के जीवन और उसके स्वाभिमान पर आधारित एक काव्य हिंदी साहित्य उन्होंने लिखा, जिसका नाम था रशिमरथी। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से ये एक माना जाता है। अगर आपको कभी समय मिले तो आप बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर के रचनाओं को पढ़ें, उनके काव्य संग्रह को पढ़ें, आप बेहद ही अच्छा महसूस करेंगे। बाकी इन्हें इनके काम के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया। इन्हें 1959 में उनके प्रसिद्ध गद्य कृति संस्कृति के चार अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1969 में। वहीं पद्म भूषण इन्हें मिला 1959 में भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। वहीं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया 1972 में उनके प्रसिद्ध महाकाव्य उर्वशी के लिए। और दोस्तों आपको बताऊं कि 1952 से 1964 तक लगातार वो राज्यसभा के सदस्य रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। और इनके क्या बेहतरीन काव्य संग्रहालय है। 24 अप्रैल 1974 की बात करें तो इस दिन महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया। दिनकर जी केवल अपनी पंक्तियों में विचार नहीं रखते थे दोस्तों, बल्कि आपातकाल के दौर में उनकी ये पंक्तियां संपूर्ण राष्ट्र का नारा बन गई थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा उन्होंने दिया। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय जनमानस की ओच, स्वाभिमान और क्रांति को प्रेरणा देता रहता है, प्राण उसमें डालता रहता है। बाकी आपने क्या इनका पढ़ा है आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल हम बहुत ही बेहतरीन सा गाना इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई बी बैक टू यू, कहीं मैं चाहिएगा दोस्तों।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम पहले

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर हाजिर हूँ फिर से आपके पास। कुमार हेड़ा गांव से, सहारनपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। और बहुत प्यारा सा गाना जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका गाना बिल्कुल जल्द हम प्ले करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ना डिकेस्ट्रो फ्रेंड्स एंड फैमिली भी जुड़ गए हैं, बोल रहे हैं कि गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि अजीब सबक है ज़िंदगी का, खामोश रहना उन्हीं से सिखाते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं। तो ये तो आप कुछ अपनी पर्सनल लेवल की बातें मुझसे शेयर कर रहे हैं। बाकी जनकपुरी से आप जुड़ गए हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, वेलेस डिकेस्ट्रो, आप भी एक बेहतरीन से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। आप दोनों की फरमाइशों को मैं बिल्कुल पूरा करूंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुझे आप समय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि आज 23 सितंबर है। इस दिन में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। UN द्वारा घोषित ये दिन बाधिर यानी कि डीफ व्यक्तियों के मानव अधिकारों, उनकी भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देने तथा बढ़ावा देने के लिए समर्पित माना जाता है। वहीं इस दिन को मनाने का प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डिफ द्वारा रखा गया था, जो दुनिया भर के 70 मिलियन यानी के 7 करोड़ से अधिक बाधिर लोगों के अधिकारों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एक संस्था है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2017 को प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके 23 सितंबर को इस दिन के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। वहीं पहली बार ये दिन 23 सितंबर 2018 को मनाया गया था। और इसी दिन क्यों आखिर ये चुना गया, मैं आपको बताऊं, विश्व बाधिर संघ WFT की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1951 में, इसलिए इस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में इस तारीख को चुना गया। बाकी और भी कई ढेर सारी बातें हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत ही प्यारा सा गाना भी है, इस गाने को एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम नाजिया आफिया की रिक्वेस्ट पर गाना प्ले करेंगे और उसके बाद क्रिस्टो फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिक्वेस्ट पर हम गाना इंजॉय करेंगे। फिलहाल ये गाना आपके लिए राजा मूवी से।

हेलो आजाद हिंद रेडियो, राम राम। आम तो आजाद हिंद रेडियो अमे घणा लांबा समय थी सांभळे छे, अन जे एमाय आज जे वंशी बेन नो जे कार्यक्रम आवे छे बपोरे 11 वाग्या थी 1 वाग्या सुधी, ई कार्यक्रम नी तो वात ज एक अलग छे। एमा खूब मजा आवे छे अने साथे साथे आपणने पोताना पसंदगीना हिंदी सॉन्ग सांभळवानी खूब मजा आवे छे, अने साथे खास साथे जे सुरक्षानी जे सलामतीनी अने जे घरगथ्थु उपचार होय जे सर्दी खांसी आवी नानी नानी बाबतोनु वंशी बेन खूब नानी नानी वातोथी अमने अपडेट आपता रहे छे, ते बदल वंशी बेन नो हूँ दिलथी खूब खूब आभार मानु छू। अने गुजरात मा घणा बधा आजादी रेडियोना श्रोता मित्रो छे अने वंशी बेन नी वातो खूब सरस होय छे। नाना पाळ्यात थी ने जसमत भाई तालुको जिलो बोटाद गुजरात, आजाद हिंद रेडियो, खुश रहो आजा मजामा रहो, नमस्ते।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ, अपडेट करती हूँ आपको, आज के इतिहास के बारे में अपडेट करती हूँ कि आज आखिर ये दिन क्यों खास हो जाता है। दूसरी चीजें भी आपको बताती हूँ जो एसोसिएटेड होती हैं आपकी हेल्थ से, और साथ ही साथ हम बात करते हैं अपनी सखियों से, माताओं से, बहनों से कि आपकी जो गृहस्थी है उसको आप तरीके से संवार सकती हैं और संजो कर रख सकती हैं। कुछ छोटे छोटे से हैक्स आपके साथ साझा करती हूं और बताती हूं कुछ छोटी छोटी सी ऐसी तरकीब जिनको लगाकर आपकी जिंदगी थोड़ी सी और ज्यादा आसान आपको लगने लगेगी। वेल, अगर आपको भी कुछ बातें मुझसे साझा करनी है तो इसका बहुत ही आसान सा जरिया है, आपको कॉल या मैसेज कर देना होगा 9639012111 पर। और अगर आपका दिल चाहता है कि आपको ये गाना अभी सुनना है तो आप इसके लिए भी मुझसे फरमाइश के लिए भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी को विश करना है या फिर मेरे थ्रू किसी तक कोई बात पहुंचानी है तो भी आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फ्रीक्वेंसी की पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि कहीं दूर ट्रेवल कर रहे हैं और हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसका भी समाधान हमारे पास है। आपको जाना होगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको सर्च करना होगा आजाद हिंद रेडियो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जो कि बहुत ही आसान सा काम है। बच्चा तलक भी उसको इंस्टॉल कर सकता है और उससे आप हमसे बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सारी की सारी बातें, कहानी या बाकी की चीजें भी हमसे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमसे हमारी सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट होना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी अपकमिंग शोज के बारे में जानकारी होती है या इन्फॉर्मेशन होती है, या हम कुछ ऐसा स्पेशल अगर करने वाले हैं, कवरेज करने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम वहीं पर जानकारी साझा करते हैं। इसके लिए भी आप हमारे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप जा सकते हैं मेटा, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर। फिलहाल हम चलेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: के बारे में और इसके ओरिजिन के बारे में बात की, लेकिन चलिए इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज केवल कुछ इशारे नहीं होते हैं, बल्कि ये व्याकरण और नियमों से युक्त पूर्ण प्राकृतिक भाषाएं हैं। इस दिन को मुख्य जो उद्देश्य मैं आपसे बताऊँ, इस दिन का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में इसे अन्य मौखिक भाषाओं के समकक्ष ही दर्जा दिलाना है। वहीं बाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कानूनी प्रक्रियाओं में सांकेतिक भाषा के माध्यम से पहुंच प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। वहीं ये दिन सरकार और समाज को याद दिलाता है कि सार्वजनिक सेवाओं और सूचना प्रणाली को बाधित अनुकूल किस तरीके से बनाया जाए। वहीं दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन से अधिक बाधित लोग हैं, जिसमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। विश्व में 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाएं उपयोग में लाई जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या यात्राओं के दौरान बाधित लोग एक सरलीकृत सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे इंटरनेशनल साइन कहा जाता है। अब इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज सांकेतिक भाषाओं के उपयोग को स्पष्ट रूप से मान्यता और बढ़ावा देता है। ये समझौता सदस्य देशों को अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देने के लिए बाध्य भी करता है। वहीं अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो भारत में राजकीय सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने सांकेतिक भाषा के मानकीकरण और अनुसंधान के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की है और वहीं NEP के तहत सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में बढ़ावा देने और स्कूली पाठ्य पुस्तकों को ISL डिजिटल प्रारूप में बदलने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दोस्तों और भी बातें आपसे करूँगी इस दिन के बारे में, बाकी अभी हम एंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी झूठा ही सही।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल।

0: सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Patient First, Always First. और दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार प्रोग्राम मेरे यानी आरजी वंशी के साथ. और कुछ आज ऐसी आपसे बात कर रही हूँ जो हम अक्सर बात करने में हिचक जाते हैं और हमारे बच्चे भी शायद शाइनेस के चलते या शर्म के चलते ओपनली हमसे भी उस बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एडोलसेंट हाइजीन के बारे में, जो कि आपको ये बताएगी कि आपको किशोरावस्था में किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है और अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना है. देखिए, ये जो एज होती है वो 10 से 19 वर्ष तक होती है लगभग, और ऐसे में शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं. तो इस समय पर सही मार्गदर्शन अगर बच्चे को ना मिले, खासतौर पर अगर लड़कियों की बात करें, तो वो जीवन भर बीमारियों की शिकार हो सकती है. इसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ कि संक्रमण का जो चक्र होता है, जब एक किशोरी एक पैड को बड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करती है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट से आपके गर्भाशय तक पहुँच जाते हैं. अब इससे क्या होता है, इससे होता है पीवीडी यानी के पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. इसके चलते ये निचले पेट में लगातार दर्द का कारण बना देता है और काफी सारी किशोरियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है और उन्हें लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है. तो इसीलिए जरूरी है कि आप स्वच्छता पर जरूर ध्यान दें और अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं. इसी के साथ जो RTI और UTI जैसी समस्याएं बच्चियों में देखने को मिली है, आप कह सकते हैं इसमें प्राइवेट पार्ट से कुछ अजीब सा डिस्क्रीट होना, खुजली महसूस होना या आपके यूरिन में आपको जलन महसूस हो सकती है, तो ये चीजें शामिल होती हैं. ये सिम्टम्स होते हैं जो बाद में जाके प्रजनन मार्ग में संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं. वहीं आपको बता दूं कि भविष्य का जोखिम भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कंटिन्यूएशन बेसिस पर संक्रमण होता रहता है और संक्रमण से जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे आगे चलकर जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम लड़कियों में बन जाती है. तो आपको जरूरी है कि आप अपनी बच्चियों को ऐसी अवस्था में स्वच्छता की वैल्यू को जरूर समझाएं और उन्हें बताएं कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है. इसी के साथ ना बहुत सारे भ्रम हैं जो महामारी से जुड़े हुए हैं, आपको ये भी बताऊंगी. लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM.

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल हम बातें कर रहे हैं जो आपकी एडोलसेंट एज होती है उसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कियों को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं और इसके चलते उन्हें काफी सारी दिक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ जानकारियों के अभाव आपको लेकर, जिससे कि आप पीवीडी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके साथ आरटीआई या फिर यूटीआई की समस्या बन सकती है, या आपको भविष्य में भी फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को हाइजीन का प्रॉपर मतलब बताएं और कहें उनसे कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं तो ठीक तरीके से पहले वॉशरूम को साफ करके ही उपयोग करें, और बाद में भी उपयोग करने के बाद भी उसको फ्लश जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी ऐसे मिथक हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं महामारी से रिलेटेड। चलिए आज उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी पीरियड्स का खून होता है वो जहरीला होता है या बहुत ज्यादा गंदा होता है, अपवित्र होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि ये वही सामान्य खून होता है जो आपकी बॉडी के अंदर नसों में बहता है। ये गर्भाशय की अंदरूनी दीवार, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके टूटने से निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अपवित्र होता है, गंदा होता है। तो ये एक मिथक बना हुआ है हमारी सोसाइटी में और ये अंधविश्वास है जिसको हमें सही में पार करके जाना होगा। वहीं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आप अचार छुएंगे तो वो खराब हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये इसलिए होता है, अचार में आपने देखा होगा आमतौर पर फंगस आ जाती है। वो आती कैसे है? हाथों की नमी से वो खराब होता है। महामारी से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप गीले हाथों से इंसान भी उसको छू लेगा तो जो अचार है वो पूरी तरीके से खराब होने की स्थिति में आ जाता है। उसको खराब करती है नमी, ना कि महामारी से इसका कोई संबंध है। वहीं बहुत लोगों का मानना है कि पीरियड्स में आपको नहाना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसे में जरूरी है कि साफ सफाई आप बिल्कुल मेंटेन करके रखें। तो अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको, तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो शरीर में कुछ ऐठन आपको जो महसूस होती है या दर्द जो हो रखा होता है, वो उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सा आराम मिलता है और आपको बहुत फ्रेश भी फील होता है, बहुत साफ साफ फील होता है। जब आप ऐसा फील करते हैं तो आधी जो परेशानी है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। आपका क्या कहना है इन बातों पर, आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या ऐसी बातों को आपके साथ साझा करना चाहिए, ताकि जो ये जानकारी है जिसके अभाव में हमारी किशोरियों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में ओपनली बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में उन मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं ये कहूंगी कि आप अपने घर में जरूर ऐसा पर्यावरण मेंटेन करके रखें कि बच्चा आपसे अपनी हर परेशानी के बारे में बात करने में हिचके ना। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त शुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और दोस्तों हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ, और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँच हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा उछला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली करनी होगी, जाना होगा स्टूडियो के बाहर, ताकि अगला प्रेजेंटर आए, अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और आपसे ढेर सारी बातें करे, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी चलते चलते कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना पीना जो है अपना सेहतमंद रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ पर कुछ गलत प्रभाव पड़े या आपके बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाएं, क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिसका बाद में जो परिणाम होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप हुआ पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं, या प्योरीफायर का भी आप पानी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप हार्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगी आपसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी आपके इस अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकती है और दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। सतर्क होकर चलें और सुरक्षित होकर चलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही मदमस्त रहिए। फिलहाल जाते जाते छोड़कर जाऊंगी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं आपसे मिलूंगी कल इसी समय और इसी प्लेस पर और बहुत सारी बातों के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड

0: advanced radiation therapy, all type of complex cancer surgery, hormonal therapy. To know more, call now 9639010313.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्र चेतना इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश को सबसे पहले प्रथम कैसे रखना है और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण योजना को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे चर्चा की चरित्र के बारे में कि चरित्र क्या है, इसी विषय में और ज्यादा बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रितेश चौधरी जी को, जो कि पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के अध्यक्ष भी हैं सुभारती विश्वविद्यालय में। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वास्तु कृष्णा जी। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि डॉक्टर अतुल कृष्णा जी ने जो अपनी किताब के अंदर विषयों को लेकर चर्चा की है वो अपने आप में एक समग्र लिए हुए हैं
0: जी।
1: देखिए, वो इस बात को कहते हैं कि जो सद्विचार होते हैं किसी भी व्यक्ति के विचार
0: जी,
1: वो विचार ही हमारे कर्म का रूप धारण करते हैं। तो विचारों और कर्मों का ये जो मिला जुला स्वरूप है इसे हम लोग चरित्र मानते हैं
0: जी।
1: और ये बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति का समाज में आचरण कैसा है, उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, अपनी प्रस्तुति कैसे समाज में देता है, और ये प्रस्तुति उसे उसके चरित्र को दिखाने में मदद करती है। तो व्यक्ति के कर्मों का विचारों के साथ जो मेल जोल है वो चरित्र है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। और लोग प्राणी मात्र में, चाहे वो जीव हो जंतु हो, उनके प्रति दया का भाव रखता है, किसी सड़क चलती किसी समस्या का समाधान करने की सोचता है, वो पर्यावरण के प्रति रक्षण की सोचता है, तो उसके चरित्र को ही दर्शाता है।
0: पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं हमको उसके कई अलग अलग भाग मिलते हैं। जैसे सबसे पहले अगर सम्मान की बात की जाए, वहां पर जो लेखक है वो हमको ये समझाना चाहते हैं कि माता पिता और अपने से बड़ों का या गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, और बचपन से ही हमारे माता पिता भी इस चीज को सभी को सिखाते समझाते हैं। बावजूद उसके समाज में कई बार ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जिससे पता चलता है कि किसी फला व्यक्ति ने माता पिता के साथ सम्मानजनक या बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। आपको क्या लगता है?
1: देखिए, मैं इस बात को तो मानता हूँ कि जो सम्मान है वो व्यक्ति द्वारा अर्जित होता है
0: जी।
1: लेकिन हम अपने बच्चे को बचपन से इस बात को सिखाते हैं कि जो भी अग्रज है उनका हमें सम्मान करना है, उनकी बात को मानना है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर तो एक हम लोग कहते हैं कि सरहाने पे कभी भी बड़ों के बैठते
0: नहीं बैठते,
1: हमें उनके पैरों की तरफ बैठना होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमने रामायण काल का एक प्रसंग है कि जब सीता जी का अपहरण हो जाता है, उनकी खोज कर रहे हैं, तो एक कोई माला मिलती है, उसे देख के कहते हैं कि इसको पहचानिए। राम जो है वो पूछते हैं लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण कहता है कि मुझे उनके गले के हार का नहीं मालूम कि उन्होंने वो पहना है कि नहीं पहना है। हाँ, कोई पायल होती तो मैं पहचान लेता, क्योंकि मैंने तो माता सीता के हमेशा चरणों पर ध्यान लगाया है
0: जी।
1: तो ये संस्कारों की और सद्विचारों की बात आती है। जो संस्कार होते हैं उनके साथ सद्विचार जुड़े होते हैं, सद्विचार से व्यक्ति मृदुभाषी होता है और उससे सम्मान का भाव झलकता है। तो हमें बड़े बुजुर्ग ही हैं जिनसे हम लोग निधि को संचित करते हैं। निधि, उन्होंने हमें संस्कारों के रूप में क्या दिया है कि जो हमारी विरासतें हैं वो उन्होंने हमें दी हैं। विरासतों में हम कैसा परिवार में खाना बनाते हैं, हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, ये सारे संस्कारों का हिस्सा है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिजिनियस नॉलेज है, वो कहाँ से मिलती है? वो हमें हमारे बुजुर्गों से मिलती है, चाहे वो घर परिवार के हो चाहे समाज के हो। तो सम्मान बड़े बुजुर्गों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी हैं।
0: सर, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई, और जो उदाहरण आपने सीता वाला दिया वो भी बहुत ही अच्छा है। सर, अब बात करें अगर हम सम्मान की अपने बड़ों की, माता पिता की या गुरुजनों की, वो ठीक है, उसके बावजूद कई बार परिवार आजकल टूटते हैं, एकल परिवार बन रहे हैं, माता पिता से भी झगड़ा हो जाता है या अपने बड़े भाई बहनों से झगड़ा होकर लोग अलग थलग हो जाते हैं, ये जबकि हमारी संस्कृति या परंपरा नहीं रही।
1: कृष्णा, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि आजकल जो है वो एक ग्रुप फैमिली के तौर पर ना देखे, ज्वाइंट फैमिली के तौर पे ना हो के हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये परंपरा आज की नहीं है, दशकों से चली आ रही है। और इन सब की वजह है कि व्यक्ति का आत्म संयमित ना होना।

0: देखिए जो चरित्र है उसमें आत्म संयम एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गुस्सा या आत्म संयम ना होने से आता है, लालच और जितनी भी अन्य नकारात्मक भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण ना होना आत्म संयमित ना होना है। अब लालच की बात आती है, परिवार क्यों टूटते हैं, तो कई बार तो परिवारों को टूटने की वजहों में ये भी चीज शामिल होती है कि हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है। जब सम्मान नहीं होता तो विनम्रता का भाव होता है, यानी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और मृदुभाषी होना चाहिए। अब वो मृदुभाषी नहीं रह जाता है, वो विनम्र नहीं रह जाता है, परिवार में जो भाषा का स्तर है वो गिरने लगता है, मन में लालच जन्म लेने लगता है, कई बार संपत्ति का लालच जन्म लेने लगता है, कई बार सिर्फ अपने हितार्थ सोचने का जो लालच है, जैसे हम कहते हैं ना परोपकार, हम परोपकार की भी बात करते हैं जो चरित्र का हमारे हिस्सा है, तो हमारे जहन से परोपकार की भावना वो खत्म होने लगती है, हम व्यक्तिगत हितार्थ सोचने लगते हैं, और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो परिवार टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो फिर वही बात है कृष्णा जी की, चरित्र का होना, उत्तम चरित्र का होना बहुत जरूरी है।
1: आपने जो मूल बात बताई कि परिवार टूटते क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मान में कमी दिखाई देती है, तो एक दूसरे के प्रति फिर नकारात्मक भाव या झगड़े लड़ाई बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये संभव है अगर छोटे अपनों को छोटा जानकर और बड़े थोड़ा बड़प्पन दिखाकर एक दूसरे का सम्मान करें तो शायद ये परिवारों का टूटने का जो चलन है कम हो जाएगा।
0: ये तो कहा ही जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो मुझे लगता है कि संस्कारों में ये दोनों तरफ से भी शामिल होता है, हम सारा का सारा बोझ किसी छोटे पर नहीं लाद सकते हैं, बड़े को भी इस बात को समझना होगा कि अगर गलती किसी छोटे से हुई है तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए।
1: अगर कोई परिवार टूटा है, बिखरा है दोस्तों, आप देखिएगा उसकी जड़ों में जाकर कि इसका बेस कहां पर है, लड़ाई शुरुआत कहां से हुई थी। तो जैसा आदरणीय सर ने बताया यहां पर कि शुरुआत में जरूर किसी न किसी के सम्मान को ठेस पहुंची होगी। आगे हम बात करते हैं सर विनम्रता की, आपने थोड़ी देर पहले भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। विनम्रता जो होती है सर, ये किसी इंसान का सबसे अच्छा गहना होती है, क्योंकि एक विनम्र व्यक्ति, एक कहावत है सर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के कड़वा बोलने वाला अपनी शहद भी नहीं बेच सकता और मीठा बोलने वाला अपनी मिर्ची भी बेच जाता है।
0: देखिए विनम्रता का तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, एक विनम्र व्यक्ति अपने व्यवहार से सब कुछ हासिल कर सकता है। जो अपने आप में, अभी आपने इस बात को खुद ही बताया है कि एक विनम्र व्यक्ति जो मृदुभाषी है वो अपने व्यवहार के कारण मिर्च को भी बेच सकता है
1: जी।
0: और जो सहज व्यक्ति है नहीं है, जिसकी भाषा में कटुता है, कठोरता है, वो शहद को भी नहीं बेच सकता। तो ये तो बहुत जरूरी सी बात हो जाती है। देखिए कहा जाता है कि जमाने में है सुखनवर बहुत मगर
1: जी,
0: है गालिब का अंदाजे बयां कुछ और। व्हाट इज दिस अंदाजे बयां से क्या मतलब है? अंदाजे बयां कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस प्रस्तुति में बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये क्या है कि आप कैसा बोल रहे हैं। तो हम जैसा बोल रहे हैं अगर उसमें विनम्रता है तो आप अपनी विनम्रता के कारण पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, और आप सब कुछ तबाह कर सकते हैं अगर आपके अंदर विनम्रता का भाव नहीं है
1: जी। दोस्तों ये कड़ी आज की आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। इस किताब के बारे में, राष्ट्रीय चेतना के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, अपने विचार भी आप हमारे साथ में शेयर जरूर करें। हमारा नंबर है 9639012111। सर चलते चलते मैं चाहता हूँ आपका संदेश।
0: देखिए मैं ये चाहता हूँ कि चरित्र व्यक्ति का बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, तो हमें अपने अंदर सब कुछ समाहित करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और एक और बात है, हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी भावनाओं का सम्मान हो तो हमें दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा, और वो विनम्रता से, वो आत्म संयम से और सहजता से ही संभव हो पाएगा
1: जी।
0: तो खुद जिए, दूसरों को जीने दें, इस फिलॉसफी पर बहुत यकीन करता हूं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो आए। दोस्तों आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और स्टूडियो में आज हमने फिर से आमंत्रित किया है डॉक्टर रितेश चौधरी जी को और आज हम चर्चा करेंगे चरित्र के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम में चरित्र के बारे में, वहीं पर जब चरित्र की बात की जाती है तो एक इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो समर्पण यानी कि डेडिकेशन और धैर्य किसी इंसान के दो सबसे मजबूत पहलू या गहने हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर, मैं आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आप इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बातचीत करने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।
0: सर, जब बात चरित्र की जाती है तो पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर हमको समर्पण के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपने कार्य और दायित्वों को पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत से हमको निभाना चाहिए।
1: देखिए, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही बात है। जब तक कि हमने जो दायित्व लिया है, जिस काम को हम कर रहे हैं, उसमें हमारे क्या है कि बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन एनी हाउ हमें उस काम को करना ही करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। तो कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, ये दृढ़ता है और दृढ़ता इंसान को सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है। तो चरित्र निर्माण में हमारे लिए दृढ़ संकल्प होना, दृढ़ता के साथ जीना, ये एक उत्तम चरित्र की ओर दर्शाता है। ये नहीं है कि हम मुसीबतों से डर के कहीं भाग गए। आजकल ऐसा होता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमने एक काम की शुरुआत की, फिर हमने कहा नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, हमने छोड़ दिया। खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि हमारे जहन में कहीं ना कहीं एक जुनून भी होना चाहिए कि हमें जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें उसे पूरा करना है। माता पिता की बात का सम्मान करते हुए अगर वो ये कह रहे हैं बेटा ये काम करो, तो हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में वो काम करना चाहिए।
0: ये दृढ़ निश्चय का या समर्पण का जो भाव है, अगर ये विकसित हो जाएगा या पैदा हो जाएगा, तो उसको अपनी लाइफ के जो सपने हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, उसको सच करने के लिए भी उसको बहुत मदद मिलेगी। और जैसे कि अगला टॉपिक भी हमारा धैर्य है।
1: देखिए बिल्कुल कृष्णा जी, एक बात है, देखिए कहा जाता है कि धीरे धीरे रेपना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब कोई समय आएगा तब उसका फल और परिणाम हमें मिलेगा, लेकिन ये जो कठिन दौर है जब हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो उस कठिन समय में शांत रहना, स्थिर रहना हमारे अंदर धैर्य की भावना को विकसित करता है। कहते भी है संतोष परम धर्म, जो है उसके साथ जिए और धैर्य रखें, क्योंकि गम की अंधेरी रात में है ना, नमन को उदास कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो हमें सुबह का इंतजार करना है, धैर्य के साथ इंतजार करना है और उस परिस्थितियों में अपने आप का, जो हमने बात की थी ना पिछले एपिसोड में कि हम आत्म संयम रखें, तो आत्म संयम रखना है, अपने संयम को नहीं खोना है, उग्र नहीं होना है, मृदुभाषी रहना है।
0: जी, कभी किसी व्यक्ति का समय भी खराब चल रहा होता है, उसको कई तरह की परेशानियां या पीड़ा चलती है, तब भी धैर्य उसके काम आएगा। और जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे जो एग्जाम देते हैं किसी सरकारी नौकरी वगैरह के लिए, तो बार बार फेल होते रहना, वहां पर भी धैर्य जवाब दे जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस एक बार उन पढ़ने वाले या एग्जाम देने वाले बच्चों को भी आप थोड़ा बताएं कि ये किस तरह से आपका दृढ़ निश्चय और धैर्य किसी व्यक्ति के सबसे मजबूत पिलर कैसे बन सकते।
1: देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है परिवार के अंदर, अपने जीवन में, रोजमर्रा में, वो होता है कि हमें पढ़ाई करनी है और हम जिन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उसका साल के अंत में जब परीक्षा होगी तो हमें उसे पास करना है। तो बच्चों, हम ये जो पढ़ाई करते हैं ये धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि परिणाम किसी एक दिन आना है, रोज नहीं आना है। साल में एक लंबा समय है जब हमें मेहनत करनी है, काम करनी है। अगर हमें ये लग जाएगा कि हम साल के अंतिम दिनों में कुछ मेहनत कर लेंगे, हो सकता है ऐसी परिस्थितियों से भी हम कभी परिणाम पा जाएं, लेकिन ये लंबे समय के लिए बहुत एक अच्छी चीज नहीं है। तो हमें मेहनत को धीरे धीरे धीरे धीरे करना चाहिए। आप सबने बच्चों ने वो कहानियां सुनी होती है ना कि रेगुलर अगर हम किसी चीज को करते हैं तो उसका परिणाम आता ही है। बहुत ही रस्सी जो होती है वो पत्थर को काट देती है ना। धीरे धीरे हमने कुएं की मेड़ पर जो रस्सी रगड़ खाती है वो धीरे धीरे मेड़ को काट देती है, यानी कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भी कोई काम होगा तो सफलता अर्जित हो की जा सकती।
0: जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और ये खास कार्यक्रम है। अगर अभी आपने रेडियो चलाया है, हम चर्चा कर रहे हैं चरित्र के बारे में। चरित्र क्या है? पुस्तक में आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण हमको समझाते हैं कि सदैव सादे जीवन को ही अपनी हमको वरीयता देनी चाहिए। यानी कि जो आजकल हम लोग दूसरों को दिखावे के चक्कर में महंगे फोन, गाड़ी या अच्छे महंगे कपड़े, चाहे हमको वो कर्जा देकर ही खरीदना क्यों ना पड़े, वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है आज के समाज में। तो इसके बारे में थोड़ा सर आप भी प्रकाश डालें।
1: देखिए, जीवन शैली को साधारण होना, सादा होना और विचारों से उच्च होना, ये एक उच्च जो व्यवस्था है, उच्च जो दर्शन है उसको दर्शाता है। कहते भी हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। तो किसी व्यक्ति का अगर जीवन में सादगी है, व्यक्तित्व में सादगी है और उसके विचारों में जो है उच्चता है, तो ये उत्तम चरित्र की ओर संकेत करती है। अगर हम किसी भी तरह की एक बनावटी चीज ले आए अपने अंदर और हम प्रदर्शन करने लगे, चाहे वो प्रदर्शन अपनी भाव भंगिमा से करें, चाहे हम खर्चे बढ़ा के कर लें, मैं किसी को दिखाना चाहता हूं कि मैंने कैसा कपड़ा पहना है, मेरे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं, आजकल बच्चों में बहुत शौक है इस बात का कि हम ये डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स लेके चलते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये बाहरी दुनिया में हमारा जो चरित्र तैयार होगा वो एक झूठा और खोखला हो जाएगा। हमें मितवही होना चाहिए, जो हमारे पास संचित किसी भी तरह का कोई भी धन है, चाहे वो एक तरह से आप ही मान लीजिए संस्कारों का है, हमें उन्हें रखना चाहिए और एक ऐसी ऐसी परिस्थितियों में उसे हमें खर्च करना चाहिए जहां उसका उपयोग ज्यादा सहज और सरल तरीके से हो, तो शायद हम बेहतर परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि अनावश्यकता का व्यय हमें किसी चीज के लिए बेहतर नहीं बना सकता है। अनावश्यक खर्च करके हम शायद अपने परिवार की जरूरतों को कुछ पल के लिए तो पूरा कर सकते हैं, लंबे समय में हमारे लिए वो भी एक परेशानी का सबब है। क्योंकि देखिए, चरित्र निर्माण में प्रतिबद्धता भी एक चीज आती है।
0: जी,
1: प्रतिबद्धता कि हम अपने परिवार, अपने जीवन, अपने समाज, अपने देश, जो संपूर्ण मानवता के हित है, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहे। अब अगर हमारे पास कुछ संचित धन है और हम देखते हैं कि समाज में कहीं कोई या परिवार में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी आवश्यकता है, तो हम समय रहते उसकी मदद कर सकें। क्योंकि समर्पण का भाव, जहां दायित्व, निष्ठा, ये सारी चीजें शामिल आती हैं, चाहे वो समर्पण अपने कार्य के प्रति हो, चाहे वो हमारा समर्पण संस्थागत हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, लेकिन समर्पण होना, प्रतिबद्ध होना, ये सारी चीजें भी संस्कार का हिस्सा है। और ये सब हो सकती है तब जब हम मितवही बनेंगे।
0: जी,
1: मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि आप खूब सारा अपनी दादी के यहाँ, नानी के यहाँ कहीं जाते हैं तो जो दादी नानी आपको जाते वक्त 50-100 रुपए देते हैं, एक छोटी सी गुल्लक ले लीजिए मिट्टी की और उस गुल्लक में जोड़ना शुरू करिए। और जिस दिन जब गुल्लक भर के बड़ी हो जाएगी, तब अपने लिए किसी तरह की एक अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चाहे माता पिता के सहयोग के लिए, उस गुल्लक को तोड़िए और उन रुपयों का इस्तेमाल करिए, मितवही बनिए और जरूरत के समय सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल कीजिए।
0: जी दोस्तों, आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और कार्यक्रम में जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद।

0: जय हिंद, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र होने के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। हमारे देश का मूल चरित्र का जो भाव है वो प्रभावित करता है पूरी दुनिया को। उसमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व का भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा का भी भाव है। आपका स्वागत करता हूँ राष्ट्र चेतना कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर रितेश चौधरी जी, जो कि पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी।
0: सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो भारत और भारत की संस्कृति। हमारा देश बड़ा प्राचीन के साथ साथ यहाँ पर संस्कार भी हैं।
1: देखिए, मैं भारत की अगर संस्कृति की बात करूँ तो उसके अंदर सदियों की दास्तां है। कोई एक दिन की बात नहीं है, ये सदियों की दास्तां की बात है
0: जी।
1: अगर मैं थोड़ा सा गीत के शब्द में बात करूँ या शायरी के शब्द में कहने की कोशिश करूँ तो गंगा की धारा वेदों की वाणी साथ लिए भारत अपनी संस्कृति में सदियों की बात लिए। तो भारतीय जो संस्कृति है, जो भारत विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाती है
0: जी।
1: यहाँ सदियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग भारत में आते हैं और आध्यात्म का, दर्शन का अध्ययन करते हैं। तो निश्चित तौर पे हम कुछ ऐसे हैं जो हम पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग हैं
0: जी। ज्यादातर कभी कभी आजकल ऐसा देखने के लिए मिल जाता है कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपने ही देश को बुरा भला भी बोलते हैं कि यहाँ पर ये समस्या है। वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परेशानियां ही देखते हैं। वो अपने गौरवशाली इतिहास को ठीक प्रकार से नहीं समझते, क्योंकि उन्हें कभी या तो बताया नहीं गया या वो उससे थोड़ा अनभिज्ञ भी रह गए हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं।
1: देखिए, ये तो एक दृष्टिकोण की बात है कि समाज में कोई भी व्यक्ति किस ढंग से देखता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो यहाँ की मिट्टी है, भारत की मिट्टी है, उसमें ऋषि मुनियों की तपस्या शामिल है और उनकी तपस्या की कहानियों को सुनाती है। और भारत की जो संस्कृति वो हर युग में हर व्यक्ति को एक नई राह दिखाती
0: जी।
1: यहाँ देखने की बात है, अगर आप उसको समझने और जानने के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में कल भी था, आज भी है और आगे भी हमेशा निरंतर रहेगा वो यहाँ की संस्कृति का गौरव, यहाँ का इतिहास और यहाँ की गाथा है।
0: तो सर, जो हमारी संस्कृति या हमारा इतिहास रहा है,
1: और आपके आजाद हिंद रेडियो का तो ये नारा भी है
0: जी,
1: राष्ट्रप्रथम सदैव प्रथम, तो मुझे लगता है कि आप जिस गौरवशाली इतिहास और दास्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके विचार, आपकी बात लाखों लोगों तक जा रही होगी, तो वो इस बात से बिल्कुल अछूते नहीं होंगे। और मुझे लगता है, मैं नहीं मानता कि भारत का कोई भी नागरिक शायद ऐसा सोचता है कि देश पहले नहीं है, हम पहले हैं।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। सर, भारत की संस्कृति के बारे में आपने बताया, इतिहास के बारे में बताया, आजकल का जो समय है, हम अपने बच्चों को वो कौन सी बातें बताएं, वो कौन सा इतिहास बताएं या वो किन चीजों को बताएं कि वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बने।
1: देखिए, हमारे पास ना, अगर हम अपने कुछ भारत के जो विशेष महाकाव्य के तौर पे या अन्य तरीकों से लिखे गए ग्रंथ हैं
0: जी,
1: उन्हें पढ़ते हैं
0: जी,
1: भारत के अंदर गौरवशाली इतिहास है महाभारत का, रामायण का
0: जी।
1: तो अगर आप बात करें राम के आदर्श की, कृष्ण की नीति की
0: जी,
1: और बुद्ध के संदेश की, मुझे लगता है कि भारत के बच्चे बच्चे को, परिवार परिवार के अंदर इन सबको जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम का आदर्श और कृष्ण की नीति और बुद्ध का संदेश, ये भारत को बनाते हैं अपने आप में एक विशेष ऐसा स्थान जहाँ ये चीजों मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि उसका अध्ययन, अध्यापन न महज विश्वविद्यालयों या विद्यालयों तक बल्कि परिवारों के अंदर भी होना चाहिए, और जो हो भी रहा है।
0: तो हमें अपने बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस या रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी जो महान हमारे क्रांतिकारी देशभक्त हुए हैं, उन सब के जीवन के बारे में सिखाना, समझाना चाहिए।
1: देखिए, भारत की जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ की संस्कृति की है, वो है आपसी भाईचारा। भारत बहु धर्म वाला देश है, विविध भाषाओं वाला देश है, हमारे पहनावे में, हमारे खान पान में बहुत तरह की विविधता दिखाई पड़ती है
0: जी।
1: हमारी बोलियां अलग अलग हैं, लेकिन उन सब के बीच बावजूद हमारे बीच में आपसी भाईचारा है, प्रेम है, सामंजस्य है। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत है
0: जी।
1: असली भारत की कहानी यही है। मुझे लगता है कि हम सबको भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को अपने जहन में, अपने आदर्श के रूप में रखना चाहिए और इस व्यक्तित्व के साथ, इस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: हमारे देश का हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है। आपके भी छोटे बच्चे हैं सर?
1: बिल्कुल।
0: वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने बच्चों को जरूर सिखाते हैं? मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं के साथ भी आप शेयर करें जो बातें आप बच्चों को जरूर समझाते हैं, बताते हैं।
1: देखिए, मैं इस बात को कहता हूँ, दयालुता को लेकर मैं बहुत बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ, देखिए, एक उदाहरण है, वो हम सब ने सुना है, मैं एक बार फिर उस बात को सुनता हूँ कि एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाते समय खड़ा हुआ था। उसने देखा कि पास में एक बिच्छू है, वो बहता हुआ जा रहा है। तो कृष्णा जी, उसने उस बिच्छू को जैसे बचाने का प्रयास किया तो उस बिच्छू ने उस व्यक्ति को डंक मार के काट लिया। अपने स्वभाव के अनुसार बिच्छू ने ये किया, और साधु ने क्या किया, दोबारा से उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की। वो पानी में गिर गया बिच्छू ने जैसे ही काटा। दोबारा जब बचाने का प्रयास किया तो उसने अपने स्वभाव के अनुसार दोबारा से साधु को डंक मार लिया। तो ऐसा करता वो बार बार, वो ऐसा करता कि उसे बचाने की कोशिश करता, सन्यासी उन्हें बचाने की कोशिश करते और वो डंक मार लेता और वो पानी में घिस जाता। बाहर बैठे व्यक्ति ने कहा कि जब ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जब ये जानवर होकर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, जो कि उसका एक मूल स्वभाव है डंक मारना, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ये बात मैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं हर किसी बच्चे को सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि समाज का हर व्यक्ति इस बात को समझे, हमारा जो मूल स्वभाव है
0: जी,
1: वो सहयोग का है, वो किसी की सहायता करने का है, वो साथ देने का है। अगर आजकल एक शब्द बहुत चलता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये जैसे को तैसा जैसी नीति तो हमको जो जैसा था वैसा ही हमको भी बना दे रहा है। हमको जैसा का तैसा नहीं करना है, बल्कि हमको अपने मूल स्वभाव के साथ रहना है। वो क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे आदर्श क्या कहते हैं, हमारे पारिवारिक संस्कार क्या कहते हैं, देश की सभ्यता क्या कहती है, संस्कृति क्या कहती है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये ऋषि और जो एक बिच्छू का उदाहरण है, मुझे लगता है कि मैं ये कहानी अपने परिवार में भी सुनाता हूं और इस आज रेडियो चैनल के माध्यम से और भी लोगों तक पहुंची हूं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हमारी आज की खास प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। जय हिंद। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर।

0: अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और

शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेती और किसानी की। और इस टाइम पर गन्ने की कटाई जोरों पर है, गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है। जिन किसान भाइयों ने कोल्हू या कलेसर पर गन्ना डालना है, उन्होंने कटाई शुरू कर दी है। लेकिन जो शुगर मिल के ऊपर गन्ना डालते हैं, जिनको अच्छा रेट चाहिए और जो वेट कर सकते हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। यानी वो गन्ने की कटाई तब करेंगे जब शुगर मिल चालू हो जाएंगे और उनकी पर्चियां आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जिनको अपनी आने वाली फसलें अगेती बोनी है, वो भी कटाई कर रहे हैं। आज बातें होंगी इसी बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बढ़िया सी रागनी के साथ।
1: मुड्डे तने बेरा है, इस कुएं पे लुगाई पानी भरनावे है। इस कुएं पे आदमियों का जब कोई काम है नहीं, तो तू क्यों करा गया अड़े?
2: अरे हम तो साधु हैं, फकीर हैं, हमसे क्यों डरती हो तुम?
1: तेरे तक को नहीं डरती, तेरे रूप ने देख के डर रही सो। तेरा साथ द्वारा तो कोई ढंग लगता ही नहीं। जवान उम्र, गोरा रंग, चढ़ती जवानी, चेहरे पे लाली कटीली आंख, मन तो ऐसा लागे से तेरे क्या है की खटक लाग रही से। इससे करके तो तू यो भगवा बाणा पैर के आया से।
2: अरे कन्या, साधु बनता है तो सिर्फ तीन कारणों से बनता है।
1: तीन कारण? तीन कारण कौन से बाबा?
2: तीन कारण, लटक, झटक या खटक।
1: मैं कहूं थी तू फकीर तो हो ही नहीं सकता। फकीर का तो दिमाग साधारण सा होया करे, भक्ति में ध्यान रहा करे। तेरा दिमाग तो फकीर आला है को ना, बहुत तेज चल है तेरा दिमाग। तेरी नजरे मने कुछ ठीक नहीं लगती, चला जा अड़े तना थे गड़बड़ हो जाएगी।

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवं भवानी सहितं नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता।
1: भगवान की भक्ति और शक्ति को जानिए।
2: जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का।
3: वास्तु कृष्णा के साथ हर सुबह दिन की शुरुआत जीवन को रूपांतरित कर देने वाली बातें सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: FM पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भक्ति और भजन रोजाना सुनना ना भूलिए। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो, सुभारती रेडियो।
1: सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। वास्तु कृष्णा के साथ
2: रख विश्वास, तू है शिव का दास।

0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: दोस्तों, यह है खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्णा। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, इस मौसम में जहां तैयारी होती है आने वाली फसलों की भी, और क्योंकि गन्ने की खेत में हमारे किसान भाई लगातार पूरे साल मेहनत करते हैं, अगर पैदावार अच्छी हो तो घर में खुशियां आती हैं। गन्ने की फसल सिर्फ कोई एक फसल नहीं, ये पूरे साल की मेहनत का फल भी होता है। इसीलिए अगर आप कोल्हू या कलेसर पर अपना गन्ना डालना चाहते हैं तो पहले रेट तय कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जिस रेट पर आपने गन्ना डालना शुरू किया था, 3 या 4 दिन के बाद रेट डाउन हो जाते हैं और शायद आपको पता नहीं चलता। बाद में जब हिसाब होता है तो पता चलता है कि उस दिन के रेट कम थे, उस दिन के ज्यादा थे। कभी भी अपना माल बेचने से पहले रेट फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुगर मिल पे डालते हैं तब तो वहां रेट फिक्स रहता ही है, लेकिन वहां पर घटतोली ना हो आपके साथ में, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो वहां पर सिस्टम होता है या जो गन्ने की तोल करवाते हैं, वहां पर जाकर एक बार आपको जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो माल है जो आपने जिंदगी भर की मेहनत की है, यानी पूरे साल दिन रात आपने एक कर दिया, तब जाकर आप ये गन्ना बेच पा रहे हैं। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना ही अब काफी नहीं है दोस्तों, अपनी फसल को बेचने के टाइम पर थोड़ा जागरूक होना भी जरूरी है।

0: जय हिंद दोस्तों, यह है खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान और आप सुन रहे हैं सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्णा। गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। जो किसान भाई अगेती सरसों बोना चाहते हैं या कोई और फसल बोना चाहते हैं और उनको अपने खेत में तैयारी भी करनी होगी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर देखिए आपकी बुहेर की फसल है गन्ने की तो अभी आपको उसके लिए समय रहेगा। पेड़ी अगर काट रहे हैं वो भी अगेती, तो आपको अगली फसल की तैयारी से पहले पहले एक बार खेत को हैरो या टीलर से जुतवा कर छोड़ना चाहिए ताकि थोड़ी धूप और हवा की मिट्टी से निकल जाए। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो फसलों के लिए अच्छे नहीं होते, उनको पक्षी खा लेते हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो खेत में कई बार दीमक भी हो जाती है, उनको पक्षी खा लेते हैं। पुराने टाइम पर तो महीनों महीनों तक खेत हमारे खाली रहते थे, जुतवा कर छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि एक फसल आज खत्म हुई और कल को ही दूसरी फसल बो दी जाती है। एक तो हमको फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, लेकिन खेत को कुछ दिन के लिए खाली जरूर छोड़िए दोस्तों। एक बार उसको जुतवा कर ऐसे ही छोड़ दीजिए तो जो पक्षी है उसके अंदर से कीड़े या कुछ ऐसी चीजों को खा लेंगे जो हमारी फसलों के लिए मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते हैं।
1: सुनिए, आप शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं तो राजा की राजा दुलारी, तू राजा की राजा दुलारी, मैं सिर्फ अपना गोश्ते

आपकी पसंद की रागनिया और देसी गानों के साथ में मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, आज के जय जवान जय किसान कार्यक्रम में बात कर रहे हैं गन्ने की फसल की कटाई के बारे में। देखिए, गन्ने की फसल कोई आम फसल नहीं होती, इसको एक मजबूत फसल के रूप में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि पूरे साल गन्ने में सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है। निराई गुड़ाई दवा खाद पानी ये सब दिन रात एक करके किया जाता है। गन्ने की जब कटाई होती है तो परिवार में खुशियां आती हैं, क्योंकि गन्ना ही वो पक्की फसल होता है जिसके बाद पैसा एक किसान के घर में आता है। तो गन्ने की फसल को जब बेचने जाएं कोल्हू कलेसर या शुगर मिल के पास भी घटतोली ना हो, आपकी जो वजन होता है ना गन्ने का, जो उनका कांटा होता है तोलने वाला, वहां गड़बड़ ना हो, इस पर ध्यान आपको रखना है। अपने रेट कोल्हू या कलेसर पर फिक्स कर लीजिए, तय कर लीजिए। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने गन्ने से गुड़ या शक्कर बनवाकर बेचते हैं तब उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आज का जमाना बहुत हाई फाई है, तेज दुनिया है ये। अगर एक किसान सिंपल साधारण बन के रहेगा तो उसको बेवकूफ बना देते हैं लोग, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो, इसीलिए आपको थोड़ा सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है। बुवाई से लेकर कटाई तक एक किसान न सिर्फ मेहनत करता है बल्कि हर रोज खर्चा भी करता है। दवाइयों में, खाद में, पानी में, हर चीजों में किसान का खर्चा होता है। उसके बाद लागत के साथ साथ मेहनत भी भयंकर होती है। तो फिर कटाई के टाइम पर भी आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपना माल बेचने के टाइम पर आपको ज्यादा सचेत और सजग रहना होगा। तो मेरा यही सजेशन है आप सभी किसान भाइयों के लिए कि अपनी फसल को बेचने से पहले अपने रेट को तय कर लीजिए, घटतोली ना हो इसका ध्यान रखिए।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, वाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल की कटाई और आने वाली फसल की तैयारी के लिए। देखिए, गन्ने की फसल कटाई के बाद बहुत सारे किसान भाई सब्जियां बोना चाहेंगे और बहुत सारे किसान भाई सरसों बोना चाहेंगे। देखिए, सरसों में भी बहुत ज्यादा लाभ है आज की डेट में, क्योंकि सरसों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरसों का असली तेल अच्छे खासे दाम में बिकता है। अब लोग डब्बा बंद या पैकेट बंद तेल उतना पसंद नहीं करते, आपसे डायरेक्ट सरसों या तेल भी खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आपके पास खरीदार भी होगा और आपको ज्यादा पैसे कमाने का मौका भी मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फसलें वही चुनिए बोने के लिए जिनमें ज्यादा मुनाफा भी होता हो। स्मार्ट किसान बनिए, सरकार के द्वारा दी गई जो सब्सिडी है, जो योजनाएं हैं, उनका भी लाभ उठाइए। सरकार आपके लिए बहुत सारी नीति नई योजनाएं लेकर आती रहती है, इसीलिए सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठाइए, तभी आप जल्दी ज्यादा तरक्की करेंगे और एक किसान खुशहाल होगा।
7: तो भाई बात कहां से, कि राजा कमंडन अर्जुन को अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहता है उत्तराखंड। तो अर्जुन कहने लगा कि महाराज, उसको तो मैंने शिक्षा दे रखी है, वो तो मेरी बेटी समान है। राजा कमंडन कहने लगा कि तो भाई, कहने लगा महाराज, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अभिमन्यु, उसके साथ शादी कर दो। इतने में द्रौपदी आ जाती है और द्रौपदी अर्जुन से क्या कहती है,
8: ए रक्षत्रापण की याद रही ना, थारे किसे बात का डर को न्या, और बहू

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
6: एरा के सुपन

0: सुबह रति आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
1: किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की है गन्ने की फसल की कटाई और आने वाली फसल की बुआई की तैयारियों के बारे में। देखिए, अगर आप कोई खास किस्म की जानकारी चाहते हैं इस कार्यक्रम में, जैसा कि अपने बीते कई प्रोग्राम्स में हमने जानकारी दी है सरकार के द्वारा किसानों के लिए नित नई योजनाओं के बारे में, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी या योजना या पैसे के मामले में, ट्रैक्टर खरीदने के मामले में या कोई भी काम करने के मामले में सरकार किस प्रकार किसानों की मदद करती है, इन सभी योजनाओं के बारे में भी हमने जानकारी दी है। आपको कोई ऐसी ही खास जानकारी चाहिए तो बता सकते हैं, ऐसी कौन सी फसलें हैं, कौन से काम हैं जिनको किसान भाइयों को गांव में रहते हुए करना चाहिए, तो हमारा नंबर है 9639012111 और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं अपनी पसंद की रागनी या देसी गाना सुनने के लिए। भी अपने फीडबैक हमें जरूर बताएं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर बताएं। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो? ए सठानी, नीर बन चलेगी? आज न जाऊंगा ना, गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजान में बिजली पड़े है, तू किनारी जागी, मैं चली जा।

तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान। और इस कार्यक्रम में आज हमने गन्ने की फसल की कटाई के बारे में, आने वाली फसलों की तैयारियों के बारे में चर्चा की। अगर कोई खास किस्म की जानकारी आप चाहते हैं, सरकार के द्वारा किसानों के लिए योजनाएं जो चलती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, या आप कुछ अलग प्रकार की फसलें या कोई गांव में रहते हो बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर 9639012111 है। हमारे साथ में बातें शेयर कीजिए, अपने मन की बातें बताइए, और आपकी पैदावार कैसी रही इस बार ये भी बता सकते हैं। और कोई रागनी या देसी गाना सुनना है तब भी आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर

आजी आइए छत्रपति शिवाजी सुभा आरती हॉस्पिटल NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
2: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो।
1: ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना, हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने।
2: कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है,
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें अभी हम करना शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व और बहरेपन से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सारे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आपके ही अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के इतिहास के बारे में। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में घोषित किया था। इस तारीख को चुनने का कारण ये है कि 23 सितंबर 1951 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना हुई थी। ये संगठन पूरी दुनिया भर में बहरे लोगों के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करता है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और अभी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में। थोड़ा सा महत्व अब इसका समझ लेते हैं, जान लेते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 70 मिलियन से ज्यादा लोग सुन नहीं सकते हैं। उनके लिए सांकेतिक भाषा सिर्फ संवाद का एक साधन नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। ये दिन याद दिलाता है कि सांकेतिक भाषाओं को बढ़ावा देना और उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा और समाज में शामिल करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि ना सुनने वाले लोग भी समाज का पूरी तरह से हिस्सा बन सकें। इस दिन दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा वर्कशॉप, सेमिनार और जागरूकता अभियान। इन आयोजनों का लक्ष्य लोगों को सांकेतिक भाषाओं के बारे में शिक्षित करना और ये समझाना है कि संचार के कई तरीके होते हैं और सभी का सम्मान होना चाहिए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और अभी यहाँ अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, वो भी एकदम लाइव। एक अच्छी वाली बात, जीवन में सबसे आसान और कठिन क्या है? गलती। क्योंकि कोई दूसरा करे तो कहना आसान होता है, और अगर खुद से हो तो स्वीकारना कठिन होता है। सीधा सा, सिंपल सा और समझने वाला मतलब है। गलती, मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, जाने में अनजाने में होती है ना, आपसे भी होती होंगी। लेकिन हम जब करते हैं तो हम पता नहीं क्यों उसे डिफेंड करने लग जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बोलने लग जाते हैं कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं हुआ, ये किसी और ने किया है, मैं उस वक्त तो यहाँ पर नहीं था या नहीं थी। जो भी बातें होती हैं, कई बार हम सही भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं और हम मानते नहीं हैं अपनी गलती को। वहीं पर किसी दूसरे की गलती होती है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हाँ इसकी गलती है। तो अपनी गलती को स्वीकारना सीखें, यही हमारी अच्छी वाली बात भी कहती है। ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। अभी आप जाइए कहीं मत, बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदा सार शे पंकज और जी अभी यहां पर अपने स्टूडियो में हैं, आपसे बातें कर रही हैं एंड अभी हमें मैसेज मिला है हमारे सोशल हैंडल्स पर अभय का, जो कह रही हैं कि सर मुझे यार बेली सॉन्ग सुनना है कुरी की वॉइस में। तो चलिए जी इनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और प्ले करते हैं इनकी पसंद का ये गीत, ये गाना।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और अभी यहाँ अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। चलिए अभी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ा हुआ फिल्मी फैक्ट आपके साथ साझा करते हैं। ये फिल्मी फैक्ट है बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को लेकर। इन्होंने अपनी पहली मूवी जो साइन की थी उसका नाम था बेखुदी, और आपको यकीन नहीं होगा जब इन्होंने ये अपनी पहली मूवी साइन की थी उस टाइम ये मात्र 16 साल की थी और अपने स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। एंड कहा यह तक जाता है कि इन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्लैमर की दुनिया में जाकर नाम कमाएं, तो स्कूल या कॉलेज तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। सबसे पहले अपनी पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। और देखिए, पढ़ने लिखने के बाद आप जो भी बने, जिस भी प्रोफेशन में जाएं, वो आपके काम में जरूर आने वाला है आपकी पढ़ाई, ठीक है? क्योंकि आपका बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, उनसे बात आप तभी तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होगी और आप अच्छे से बात करना जानते होंगे। सो इसलिए पढ़ाई कभी भी ना छोड़ें। भाई मैंने साझा तो करना चाहा था आपके साथ फिल्मी फैक्ट, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई के लिए भी मैंने कह दिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्मी फैक्ट था ये मेरे साथ साझा किया था वीरेश जी ने। सो वीरेश जी थैंक यू। बाकी जो हमारे साथी अभी इस वक्त में हमें सुन रही हैं, वो भी हमारे साथ ऐसा ही कोई फैक्ट साझा कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बेंदाल सार छे पंकज। अच्छा भाई, जब हम अपना काम फिनिश कर चुके होते हैं और हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो हम बोर हो रहे होते हैं और अपना टाइम पास करने के लिए हम क्या करते हैं, गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अब हर किसी की अलग अलग पसंद है, हर कोई अपने अलग अलग गेम खेलता है अपने मोबाइल फोन में। अब बाहर भी नहीं जाते लोग, ऐसा ही करते हैं। एंड गेम भी तरह तरह के हैं और नई नई गेम आते ही रहते हैं। लेकिन अभी एक ऐसे गेम के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं जो इतना ज़्यादा पसंद किया गया जिसे तकरीबन 1 अरब लोगों ने खेला। ये गेम था स्नेक गेम। आपने भी खेला होगा, छोटे मोबाइल फोन्स के अंदर होता था और अभी भी कुछ मोबाइल फोन में होता है और काफ़ी ज़्यादा ये गेम पसंद भी किया जाता है आज भी। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जैसा मैंने बताया 1 अरब लोग इस गेम को खेल चुके हैं। वैसे आपने खेला है या नहीं आप बता सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और चलिए अभी आपसे कर लेते हैं एक फिल्मी क्विज। तो तैयार हैं आप, क्योंकि फिल्मी क्विज होने वाला है एक कंडीशन के साथ। बताऊंगा वो कंडीशन भी, लेकिन पहले क्विज सुन लीजिए। आज ये जो क्विज आपसे मैं कर रहा हूं, इस क्विज में आपको मुझे बताना है बॉलीवुड मूवी हम दो हमारे दो में जो लीड एक्ट्रेस है इनकी कृति सैनन, उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है इस मूवी।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और जी अभी यहां पर अपने स्टूडियो में हैं, आपसे बातें कर रही हैं एंड अभी कुछ ही समय पहले आपसे एक क्विज मैंने किया था, फिल्मी क्विज, और इस क्विज में मैंने आपसे पूछा था बॉलीवुड मूवी हम दो हमारे दो में जो लीड एक्ट्रेस हैं इसकी कृति सैनन, उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है मूवी में, इतना सबस आपको मुझे बताना था और एक कंडीशन थी कि आपको जवाब सबसे पहले देना था और करेक्ट देना था वो भी हमारे सोशल हैंडल्स पर जाकर। सो हमने जैसा भी चेक किया तो हर बार की तरह कई सारे जवाब हमें मिले हुए हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले किसका जवाब आया है और वो करेक्ट है या नहीं। तो जैसा कि हमने चेक किया तो हमें ये जवाब मिला है सबसे पहले रचित का, इन्होंने हमें बताया है कि हम दो हमारे दो मूवी में कृति सैनन के कैरेक्टर का नाम होता है आन्या मेहरा। जी बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका और सही दिया है आपने, ये हम बता भी चुके हैं और अभी आपको मिल रहा है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी ऐसे ही सुनते रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन को यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। अच्छा भाई, कितने ही कैंपेन्स के थ्रू या कितने ही लोगों के थ्रू आप तक ये बात पहुंचाई जाती है, आपको ये समझाया जाता है कि पेड़ पौधे लगाएं, और ये भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत जो है वो पेड़ ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन केवल पेड़ों से ही हमें नहीं मिलती। वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का 85% हिस्सा समुद्र से भी आता है। इसलिए पेड़ों को बचाने के साथ साथ समुद्रों की सफाई भी जरूरी है। सो कभी भी आपका बाहर जाने का प्लान बनता है, कभी ट्रिप पर बाहर जाते हैं और समुद्र के आसपास होते हैं या वहां जाते हैं, तो प्लीज वहां पर कूड़ा किसी भी प्रकार का ना फेंके। और दूसरा भी, अगर कोई आपको ऐसा करता दिखता है तो उसको रोकें और उसको समझाएं, बताएं कि ऐसे कूड़ा यहां पर ना फेंके, क्योंकि सभी मिलकर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो ही ये संभव हो सकता है। आई होप आप इसे समझेंगे और जब भी कभी बाहर घूमने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी के लिए सुनते रहिए ऐसे ही आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज, अभी यहां अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। अच्छा, समय की बात की जाए, टाइम की बात की जाए, तो बड़ा मूल्यवान इसे बताया जाता है ना। अगर आपको जब कोई समझाता है तो वो ये कहता है कि भाई देखो, फालतू कामों में अपना समय बर्बाद ना करो, कुछ अच्छा कर लो जिंदगी में, जो आपको समझाता है। एंड हमें ये भी पता होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि पंकज ये बात शुरू कहाँ से की थी और तुम कहाँ पर लेकर आ गए। भाई बताता हूँ, इसके पीछे भी कुछ बात है, इसलिए यहाँ तक मैं लेकर आ गया। देखो, हर साल 2 मिनट बड़े कीमती होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कौन से 2 मिनट हैं जो इतने कीमती होते हैं। सो बताता हूँ आपको, हर साल 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 60 सेकंड नहीं 61 सेकंड होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपके कानों ने, 60 सेकंड नहीं 61 सेकंड। और हर साल के 2 मिनट ऐसे होते हैं। आप और ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर लिखा है इसके बारे में। एंड मैं भी अभी पढ़ रहा था तो मैं भी चौंक गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार। खैर, बात समय की करनी शुरू की थी तो उसी बात से खत्म करता हूं कि अपना समय वाकई में अच्छे कामों में लगाएं, व्यर्थ में इधर उधर समय को अपने ना गंवाएं। बाकी फिलहाल सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर शे पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आज।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाए सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल, नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
2: 1, 2, 3, 4.

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।